0: हाय, मैं हूँ करीना कपूर खान। आई लव हाउ एवरीथिंग टर्न्स गोल्डन ड्यूरिंग समर, इंक्लूडिंग द गोल्डन ऑफर्स फ्रॉम मलाबार गोल्डन डायमंड्स। अब पाइए फ्री कैश वाउचर्स विद हर डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस वर्थ 750 pounds, और एंजॉय कीजिए 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ 22-carat गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर। विजिट मलाबार गोल्डन डायमंड्स शोरूम एट ग्रीन स्ट्रीट ईस्ट लंदन एंड ब्रॉडवे साउथ हॉल।
1: ये कहानी है 108 बेस हॉस्पिटल की। हम उनके जान बचाते हैं जो देश पे जान लगाते हैं।
2: वॉच 108 बेस हॉस्पिटल उरी स्टार्ट्स 15 अगस्त, देन एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी।
3: जॉइन द थाउजेंड्स ऑफ हीट पंप ओनर्स फीलिंग वार्म एंड फजी।
4: I've lived here 20 years. I ain't moving, so I thought better future-proof me home.
5: We started the trend. The old street's applying for the government grant now.
4: With the energy it saves, I don't know what's better off, the planet or my wallet.
5: I'm Eddie's your little bookworm. Says it's 3 times more efficient than our old boiler.
3: Feel all warm and fuzzy inside with the £7,500 government grant towards your heat pump at gov.uk/clean energy.
6: Eligibility criteria apply. See website for details.
7: The Meal Deal Plus at McDonald's. Bag yourself a mayo chicken or cheeseburger with medium fries, a selected drink, and one of 5 bonus sides, like 4 McNuggets or a mini McFlurry. All for £5.59.
8: Now that's saver satisfaction.
9: From 11 AM, not on delivery. Includes a selected saver menu burger, medium fries, selected drink, and a selected bonus side. Price and participation may vary.
10: With a Little Plus Bakery Spin, you can get a free bakery coupon every time you shop. Just scan our award-winning Little Plus app. Spin, win, and enjoy a free bakery item. Little, more to value.
11: One spin per customer per day, subject to availability. Ends 19th of August, 18 plus GB only. T's and C's apply. See little.co.uk/LPTV.
12: This is Sunrise, the UK's biggest.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

करता है न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे मुंह

0: Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations, and community spaces. Email info@royalchaivending.com. Royal Chai, brewed for business. T's and C's apply.
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे। अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
1: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना साडा सोना,
2: वसीम ज्वेलर्स।
3: दिल चोरी साडा हो गया।
1: आफ्टर द फिनोमिनल सक्सेस ऑफ हिज 2024 यूके टूर, दिल चोरी साडा हो गया इज बैक। वन सोल्ड आउट शो ऑलरेडी इन लंदन, अनदर शो अनाउंस्ड इन लंदन ऑन पब्लिक डिमांड। पेपेस पिरी पिरी प्रेजेंट्स एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद द किंग ऑफ सोलफुल पंजाबी, हंसराज हंस, लाइव इन लंदन ऑन संडे 11th अक्टूबर एट बेक थिएटर हेज, सोल्ड आउट। सेकेंड शो ऑन सैटरडे 10th अक्टूबर एट द सोफिटल होटल लंदन Heathrow. Doors open at 6:30 PM. Book your seats from Eventbrite. Experience the timeless hits, the magical voice, and an evening full of emotion, nostalgia, and entertainment. Supported by Madhus. Call 07850-742-143. Hansraj Hans live at Beck Theatre Hayes and Sofitel Hotel Heathrow. Don't miss it. Radio partner Sunrise Radio, TV partner Punjab TV. Brought to you by Samara Events UK and Top Notch Studio.
4: Bye, my KPR. कितना सुंदर बाबिहार, लेके चुनरी रंग बिरंगा सबके मनवा भावेला।
1: Watch Bhojpuri Bawal every Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
5: With a Little Fuss Bakery Spin, you can get a free bakery coupon every time you shop. Just scan our award-winning Little Fuss app. Spin, win, and enjoy a free bakery item. Little, more to value. One spin per customer per day, subject to availability. Ends 19th of August, 18 plus GB only. T's and C's apply. See little.co.uk/LPTV.
6: Tune in to The Love Lounge with me, Amit Soda, every Sunday from 7 PM, where it's all about the love music, romance, love tips, love dilemmas, and so much more. See you there.
7: Hi, I'm Sonia Dutta. Don't forget to join me on Drive Time weekdays from 4 PM with Pepe's Piri Piri. You know I like to boggle your mind with all the fun and games, so if you like a challenge, tune in and get involved. See you there.
8: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
9: Okay, what's the time saying? It is 16 minutes past 3. Good afternoon to you guys. Right, so these were two options on listener's choice. Option A.